0: After the NEET controversy and after the CBSE online evaluation round, questions are being raised over the UPSC prelim examination. Nearly 5.5 lakh aspirants appeared for the exam on the 24th of May. But as soon as the paper ended, social media was flooded with complaints. To understand the outrage, India Today reached Mukherjee Nagar in Delhi, a UPSC coaching hub.
1: बच्चों का कहना ये है कि इस बार का जो प्री का पेपर आया बहुत कठिन आया, लीक से हटकर आया, थका देने वाला आया और खास तौर पर हिंदी भाषी विद्यार्थी और क्षेत्रीय भाषी विद्यार्थियों का कहना है कि भाषा के कारण पेपर उनके लिए बहुत कठिन हुआ।
0: Several aspirants alleged that this year's paper strayed sharply from the traditional pattern, with many claiming confusing Hindi translations. Many questions were harder to decode, with mechanical language and poorly framed questions. Candidates say crucial time was lost simply trying to understand what was being asked. The CSAT paper too has triggered complaints. Students say mathematics questions involved lengthy calculations, while comprehension passages were packed with complex wording.
2: जो लेंदीनेस है इस पेपर की, उसमें जो और ऐड करता है वो है वेगनेस। मतलब आप एक एक पन्ने के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या है, तो वो आपके सारे कॉन्फिडेंस को, सारे प्रिपरेशन को ऊपर से नीचे बदल देता है, जिसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर फिर आने लगता है।
0: फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट इज इयर्स ऑफ सैक्रिफाइस, प्रिपरेशन एंड होप। But this year, many aspirants believe the battle was not just about knowledge, but also about decoding the language of the paper itself. With Anmol Bali, Bureau Report, India Today.
3: LIC, हर पल आपके साथ।

0: टेक्स्ट दीजिए प्लीज।
1: देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसमें इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई। जिस तरीके से वेस्ट एशिया के कारण इफेक्ट जो है वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे ग्लोबली इफेक्ट है, और इसीलिए पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज तो नहीं है। इस चीज को सरकार पहले से कहती रही है। कल आईबीएम में इसको लेकर जो है पूरी बातचीत भी हुई है। और हाँ, इतना जरूर है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्लोबली जो है क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी कारण जो है गवर्नमेंट को भी जो है वो पेट्रोलियम कंपनीज को भी जो है वो पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स है पेट्रोल और डीजल के उनको उनके रेट्स को जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जो बाइंग है, जो परचेज है, क्योंकि 85% पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट जो है वो भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, और इसी कारण जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके अलावा जो प्राइस है वो लगातार जो है वेस्ट एशिया के कारण जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वो बढ़ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट जो है ना सिर्फ भारत पे बल्कि ग्लोबली बढ़ रहा है, और इसीलिए प्राइस जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और पिछले अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 दिनों के अंदर जो है 7.5 रुपए के करीब जो है पेट्रोल पर जो है वो प्राइजेस पेट्रोलियम कंपनी बढ़ा चुकी हैं, क्योंकि उनको लगातार जो है जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है वो लगातार नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई पेट्रोलियम कंपनी सीधा कस्टमर्स पे भी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो उनको लॉसेस है पर डे 1000 करोड़ का है, और जो प्राइस बढ़ाया गया है 7.5 रुपए उससे भी अभी उनको उसके बावजूद जो है पेट्रोलियम कंपनी को 750 करोड़ का पर डे लॉसेस है। और यही कारण है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोलियम कंपनीज जो है वो प्राइस को बढ़ा भी रही हैं।
0: जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग एट दिस पॉइंट। द सेंटर, द गवर्नमेंट येट अगेन नोटिफाइंग ऑल सिटीजन्स नॉट टू स्प्रेड पैनिक इन द अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, एंड दैट देयर इज no scarcity of any sort of energy when we speak of petroleum or petroleum products and natural gas as we speak of the current scenario.

0: कोई जवाब नहीं आया था, उसे लेकर के भी कोई खास जवाब दे नहीं पाए गिरीवाला सिंह। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे कि देर से पुलिस को क्यों आपने इन्फॉर्म किया, शीशा के फैमिली मेंबर्स को आपने देर से क्यों इन्फॉर्म किया, और अगर सुसाइड था या फिर बॉडी हैंग थी तो फिर आपने क्यों उतारा, उस वक्त पुलिस को क्यों बुलाया, थी कई सारी चीजें थी जिसके बाद फाइनली सीबीआई ने अराउंड 5:19 PM से ऑफिशियली गिरीवाला को अरेस्ट कर लिया।
1: कि क्या ये टैम्परिंग ऑफ एविडेंस के लिए अरेस्ट हुआ है, कि ये अबेटमेंट टू सुइसाइड में अरेस्ट हुआ है, कि ये मिसयूज ऑफ पावर में अरेस्ट हुआ है?
0: देखिए अभी तो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस की बातें सामने आई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी माना है कि गिरीवाला सिंह जो है वो एविडेंस को टैम्पर कर सकती है, और हाईकोर्ट में विशा की फैमिली जो लॉयर थे उन्होंने भी इस बात को बताया है कि जो सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ था वो जानबूझ करके लीक करवाया गया था, ये भी एक टैम्परिंग है एविडेंस की। दूसरी तरफ जो त्रिशा की फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि गिरीवाला सिंह जो है उन्होंने क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ली हुई है, और इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि क्राइम सीन को डैम्पर किया होगा गिरीवाला सिंह ने। तो ये इन तमाम एलिगेशन के आधार पर फिलहाल सीबीआई ने जब उनसे क्वेश्चनिंग की, और उनके अलावा नेबर्स जो वहां पे उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने त्रिशा को ले जाते हुए देखा होगा, जिन्होंने त्रिशा को सीढ़ियों से उतारा समर के साथ मिलकर के, उनसे क्वेश्चनिंग हुई, और इन सब के बेसिस पे फिर फाइनली सीबीआई ने गिरीवाला को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उनको अपने सवालों का सही सही जवाब गिरीवाला दे नहीं पाई। करीब 5 घंटे तक ये क्वेश्चनिंग चली थी गिरीवाला सिंह से, अराउंड 12 के आसपास ये क्वेश्चनिंग शुरू हुई थी और 5 बजे तक ये क्वेश्चनिंग जो है चलती रही, जिसके बाद गिरीवाला सिंह को 5:19 PM पे ऑफिशियली अरेस्ट दिखाया गया।
1: जी तो रवीश, अभी अगर हम पूरा केस रिकैप करें तो त्रिशा का हस्बैंड, जिन्होंने खुद ही आके एक तरह से अपना सरेंडर करा बहुत प्रेशर लगने के बाद, मीडिया में डिबेट हुआ उसके बाद उन्होंने आकर अपना खुद ही स्क्रिप्ट लिखा, खुद ही डिसाइड करा कब वो करेंगे, पुलिस तो कुछ कर नहीं पाई उसके केस में, तो अभी उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ दोनों स्टैंड अरेस्टेड बाय सीबीआई, और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, किस यू नो विच वे इज द इन्वेस्टिगेशन गोइंग राइट नाउ?
0: देखिए आज कल जो है, कल आपको बता दें कि समझ की हियरिंग होनी है, जो रिमांड उसकी खत्म हो रही है, तो कल समझ को, अब लग रहा है आज जब अरेस्टिंग हुई है गिरीवाला, तो दोनों को मतलब मदर एंड सन, इन दोनों को कल सीबीआई जो है कोर्ट में कल पेश करेगी और इसके बाद इनके आगे की कस्टडी ली जाएगी। तो संभावना इस बात की बताई जा रही है, सीबीआई जो है एक कैंप यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस कोर्ट से, और वहीं से इस पूरे कोर्स की, इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी अपने कैंप ऑफिस से भोपाल में, और जब कस्टडी मिल जाएगी कल माँ और बेटे दोनों की, गिरीवाला सिंह की और समर सिंह की, तो सीबीआई इनको सीधे कैंप ऑफिस में ले जाकर के फिर इस पूरे केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देगी।
1: जी रवीश, हमें पिक्चर्स दिख रही है, मेरे ख्याल से ये गिरीवाला सिंह के घर के बाहर की पिक्चर्स हैं, उनको कभी भी किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है, तो वो थोड़े पिक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास। बट रवीश मुझे बताइए, इस समय आई थिंक ये जो आपने बात बोली सीसीटीवी कैमरा की सिलेक्टिव लीक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब यही बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि ये जो लीक्स हो रहे हैं ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, सिर्फ सिलेक्टिव लीक्स क्यों हो रही हैं? इस मुद्दे को भी सीबीआई ने उठाया है कि सिर्फ उनके ब्यूटी पार्लर जाने का 1 घंटे पहले का जो लीक हुआ, फिर उनका जो सीढ़ी से नीचे लाते वक्त का लीक हुआ वो भी सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में आया है, पूरा सीक्वेंस नहीं दिखाया गया है, क्या ये सारी चीजें सीबीआई अब इज गेटिंग इनटू इट?
0: देखिए सीबीआई ने इसीलिए सारी डीवीआर जो है उसे सीज कर लिया है, और जो मीडिया में जो वीडियो सामने आए थे वो छोटे छोटे ड्यूरेशन के थे, और इसीलिए शुरुआत में इस तरीके का डाउट गया कि वो वीडियो टेम्पर्ड करके बनाए गए थे, उनमें टाइम भी ड्यूरेशन चेंज था, डेट चेंज थी, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि उसकी जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें वीडियो तो सही पाया गया है, लेकिन फिर भी जो कट्स हैं उसमें, उसकी वजह से सीबीआई ने अब एक पूरा वीडियो जो है 2 से 3 घंटों का उसे डीवीआर समेत कैप्चर किया है, और कोशिश की जा रही है कि जो टेम्परिंग हुई है अगर किसी भी तरीके की तो उसे सीबीआई अब यहाँ पे प्रूव करे और उसके बाद इस केस को और ज्यादा वो मजबूत करे। लेकिन हाईकोर्ट में जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि गिरीवाला सिंह ने एविडेंस के साथ टेम्पर जरूर किया है, और इसी बेस पे गिरीवाला सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल की जो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली थी उनको इसी वजह से वो रद्द भी कर दिया गया है।
2: पास चल रही थी और दो टीम आए राजस्थान।
1: अभी बताइए क्या सीबीआई इस केस की डिटेल्स में तो जाएगी ही, क्या साथ साथ ये भी देखेगी कि पुलिस मध्य प्रदेश की क्यों इतनी वीक रही इस पूरे मामले में, चाहे वो ऑटोप्सी का मामला हो, चाहे आपको यू नो त्विशा के हस्बैंड को ना पकड़ने का, समर्थ को ना पकड़ पाने का 11 दिन बाद भी का मामला हो, या ये जितनी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो सब, क्या उनकी भी डिटेल्स मिल पाई हैं? Alright, I seem to have lost that line with Ravish. Let's cut across to my colleague Arvind Oja joining us from the newsroom over there. Arvind, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि CBI का इस समय ambit क्या है? हमने जब ये केस के बारे में रिपोर्ट करना शुरू करा था तो हमने कहा था ये एक abetment to suicide का मामला है, dowry का मामला है, फिर इसमें tampering of evidence भी आ गया। अभी CBI इन सारे मामलों में लगी हुई है और क्या वो पुलिस का रोल जो था इतना बुरा मैनेजमेंट करा मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे केस को, क्या वो भी देखेगी?
3: देखिए फिलहाल जो सीबीआई की टीम है ये डाउरी डेथ का मामला है, जो लोकल पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया था उसी को सीबीआई की टीम ने री रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद सीबीआई की एक टीम वो भोपाल पर पहुंची थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम गई थी और साथ ही साथ सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट वो भी थे। और आज की अगर बात करें तो जो गिरिबाला सिंह है उनसे लंबी पूछताछ हुई, तकरीबन 6 घंटे तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, जिसमें सीबीआई की तरफ से जो डिप्टी एसपी हैं वो लगातार इसको लीड कर रही थी, वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं वो पूछताछ कर रही थी। और पूछताछ के बाद कुछ लीड मिला, कुछ एविडेंस मिले और साथ ही साथ कन्फ्रंट किया गया कुछ एलिगेशन के साथ, उसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम ने अरेस्ट किया है। अब आगे इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर बहुत मुमकिन है कि सीबीआई की टीम इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। लेकिन अगर इस केस की बात करें, जैसा आपने पूछा कि लोकल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को री रजिस्टर्ड किया था, जो एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है जिसमें गिरिबाला सिंह पर कई आरोप तो टीसा के परिवार की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया था जो काफी हैरान करने वाला था कि 2 लाख रुपए जो गिरिबाला सिंह है उन्होंने जो शादी हुई थी उसके बाद मांगे थे और वो परिवार ने दिए थे, साथ ही साथ हरासमेंट का भी आरोप लगाया था। तो फिलहाल जो सीबीआई की टीम है वो जो जांच कर रही है, जो लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसी को रजिस्टर्ड किया है और फिलहाल उसी पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। और ये माना जा रहा था जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने जो बेल रिजेक्ट किया था एंटी सिटिपरी बेल, उसके बाद से ही ये गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। और जब आज सीबीआई की टीम घर पर पहुंची पूछताछ करने के लिए, कई टीमें थी सीबीआई की, तभी ये माना जा रहा था कि जिस तरह के आरोप है गिरिबाला सिंह को अरेस्ट किया जा सकता है, तो अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे का जो लीगल प्रोसेस है वो पूरा होगा।
1: अरविंद, ये पूरा मामला देखिए पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए अबेटमेंट टू दाउरी इनफैक्ट का जो मामला है वो कोई भी अगर मैरिज होती है, 5 महीने की थी त्विशा की, तो कोई भी मैरिज जो 1 साल से अंदर होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका रजिस्ट्रेशन होता ही है अंडर द डाउरी एक्ट, दैट इज एनी वेज अ फॉरगॉन, लाइक इट्स अ थिंग दैट द गवर्नमेंट एंड द पुलिस विल ऑटोमेटिकली डू। पर ये मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि इतनी मिसहैंडलिंग हुई लोकल लेवल पर कि मीडिया को जंप करना पड़ा। हमने 11 दिन 12 दिन लगातार इस पर डिबेट करी, लगातार सवाल उठाए, रवीश ने क्या फैंटास्टिक रिपोर्टिंग करी है इस पर, जाके गिरिबाला जी से बात करा, उन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं मौका टू कैरेक्टर असैसिनेट हर डेड डॉटर इन लॉ, शी डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर दैट, देयर वर मैसिव अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ पावर दैट शी हैड एट ऑल लेवल, शी एंड अ सन एज वेल, व्हिच इज व्हाई द सीबीआई हैड टू स्टेप इन। सो सीबीआई हैज कम इनटू दिस एंटायर नैरेटिव अंडर अ ट्रेमेंडस प्रेशर, public, from the media, also from the Supreme Court, who took sole motor cognizance.
3: और देखिए अगर बात की जाए तो जो टीसा की फैमिली है वो लगातार शुरुआत से ही आरोप लगा रही थी खासतौर से लोकल पुलिस पर कि वो इन्फ्लुएंस में है गिरिबाला सिंह के, क्योंकि वो रिटायर जज हैं और परिवार काफी रसूखदार है। और आप इसी से अंदाजा लगाइए जिसकी एक लाश का पोस्टमार्टम 12 दिन बाद होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो परिवार है वो कितना आहत रहा होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोकल पुलिस पर जो त्रिशा की फैमिली है वो आरोप लगा रही थी, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए अर्जी दी थी, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद चूंकि ये मामला इतना बड़ा, इंडिया टुडे ने इसको उठाया इस पूरे मामले को, जिसके बाद जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने सीबीआई के लिए इस केस को सीबीआई जांच के लिए कहा। उसके बाद सीबीआई की टीम ने जांच की और उसके बाद अरेस्ट किया। जो आपने गिरिबाला सिंह की बात की, रवीश ने इंटरव्यू किया था, जो कुछ गिरिबाला ने बोला वो उनके खिलाफ ही गया। एक लड़की की मौत होती है जिसकी बहुत शादी हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ था और उसका जिस तरह से करेक्टर एसेसिनेट किया गया और गिरिबाला की तरफ से वो बयान भी इनके खिलाफ ही गया। और इस वजह से जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एंटीसिटिबरी बिल पर सुनवाई हुई थी तो सीबीआई ने इसका विरोध किया और अब आखिरकार अरेस्ट किया गया है फाइनली, जो फैमिली की डिमांड थी। अब आगे
1: इनफैक्ट अरविंद रवीश हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, ही इज राइट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ Twisha's in-laws. Ravish, take us through what exactly is happening over there. इस समय क्या चल रहा है? ये बोला जा रहा था कि इतना प्रेशर लग रहा है कि सीबीआई, जैसे अरविंद ने कहा कि एक तलवार सी लटक रही थी अरेस्ट करने की, और फाइनली आज जब हाईकोर्ट ने उनका एक्सटेंड नहीं करा एंटिसिपेटरी बेल, उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अरेस्ट, इट वॉज वेरी लाइकली दैट शी विल गेट अरेस्टेड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, डू यू हैव एनी लीड्स ऑन व्हाट अकाउंट द सीबीआई हैज मेड दिस अरेस्ट? डू दे हैव एविडेंस ऑन टैम्परिंग और हैव दे पिक्ड अप मोर क्लूज ऑन हर रोल in her suicide? Is this an abetment to suicide case?
4: देखिए, जो FIR CBI ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहाँ पे दर्ज हुई है। CBI ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो CBI अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद CBI ने अरेस्ट किया है। हम आपको पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं उस जगह की जहां से लेकर के आज ले जाएंगे। फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस अरेंजमेंट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और सामने वो गेट है जिसके पीछे एक इनोवा कार खड़ी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई उसमें गिरिबाला सिंह को लेकर के यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन सवाल क्या कहते हैं, सवाल थे गिरिबाला सिंह से पूछा गया कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस रात को त्रिशा यहाँ पे उसकी मौत हुई थी वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को टाइमली आपने क्यों नहीं दी? तो इसे लेकर के गिरिबाला सिंह की तरफ से कोई आंसर मिला नहीं सीबीआई को सेटिस्फैक्ट्री, इसे सीबीआई ने नोट किया। इसके साथ ही ये भी पूछा गया कि जब यहाँ पे गिरिबाला सिंह जो त्रिशा थी यहाँ पे अगर वो मृत थी, यहाँ पे डेड थी, आपने कोशिश की उसे बचाने की अगर, तो इसकी जानकारी आपने टाइमली पुलिस को और फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं की? क्योंकि जो पुलिस है उसे तो इन्फॉर्मेशन एम्स हॉस्पिटल जाने के बाद मिलती है, जबकि यहाँ से एम्स हॉस्पिटल जो है वो बमुश्किल 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन पुलिस तक इन्फॉर्मेशन बहुत देर से पहुंचती है। और सोचिए, ये उसकी बात हो रही है, कोई आम इंसान का घर नहीं था, जिसे कानून बहुत अच्छे से पता है, जिसे पता है कि अगर कुछ क्राइम हुआ है या कोई घटना हुई है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए। एक रिटायर्ड जज का घर है, एक क्रिमिनल लॉयर का घर है, लेकिन पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन बहुत देर से पहुंची। इसे भी सीबीआई ने यहां पे एक वैलिड प्रूफ मानते हुए क्वेश्चनिंग की, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। सीसीटीवी फुटेज को लेकर के सवाल हुए। आप देखिए, इस घर में 8 CCTV कैमरे लगे हैं और 8 CCTV कैमरों में से सीबीआई ने सवाल पूछे कि बाकी सीसीटीवी कैमरे जो ऊपर की तरफ भी होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ एक सच दिख रहा है और वो कि त्रिशा अकेली जा रही है और बाद में उसे 3 लोग नीचे लेके आ रहे हैं। तो इसे भी टेम्परिंग माना था पहले MP गवर्नमेंट ने और इसके बाद सीबीआई ने भी यही सवाल पूछे कि आपने सिर्फ ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों रखे जो आपकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये तमाम सवाल सीबीआई ने पूछे यहाँ पे। सीबीआई ने ये भी पूछा कि अगर त्रिशा ने अबॉर्शन करवाया था तो ये उसकी मर्जी से हुआ था, इसका आपके पास क्या सबूत है? आपने प्रेशर नहीं किया, इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया गिरिबाला सिंह की तरफ से। इसके अलावा सीबीआई ने ये पूछा कि जो व्हाट्सएप चैट है उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि वो आप लोगों से खुश नहीं है, हैरेसमेंट उसके साथ हो रहा है, वो बार बार अपनी फैमिली को ये बता रही है कि वो यहाँ फंस गई है, ट्रैप्ड है, और वो अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को ये कह रही है कि तुम शादी मत करना। और 5 महीने में ही अगर कोई लड़की ये बातें कह रही है शादी के, इसका मतलब उसका जबरदस्त तरीके से मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, तब कहीं जाकर के उसको ये सब लिखना पड़ा अपनी फैमिली मेंबर्स को बताना पड़ा, तो इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है।
1: कर रहे हैं इस समय, आप सारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस नेक्स्ट। रवीश पाल सिंह रिपोर्टिंग ऑन दैट स्टोरी। द न्यूज एट द मोमेंट इज दैट गिरिबाला सिंह स्विशाज मदर इन लॉ हैज नाउ बीन अरेस्टेड बाय CBI। That DKS, that is DK Sivakumar, the incoming Chief Minister of Karnataka, the oath taking is likely in front of Vidhan Sauda as early as Sunday. And this also what we are learning is that after Siddaramaiah, DK Sivakumar is also to leave for Delhi. DK Sivakumar is to leave at 7:30 p.m. today for Delhi. We were earlier getting reports that the governor actually reaches Bengaluru, in fact, tonight. And that's when they will be meeting. There were also reports that the meeting could happen tomorrow. But now we are told that after Siddaramaiah, who we are told has just left for the national capital, DK Sivakumar will also be taking a flight to the national capital. Possibly this is for cabinet and berths. Possibly this is to understand how the Congress government under DK Sivakumar will be looking. But I keep drawing your attention to this. Apart from two men who are coming and exchanging power, what does this story really mean for the people of Karnataka? That's what our focus really needs to be on. And that's what we'll also try to find out. Apoorva, my colleague, joins us for more details on this. Apoorva, what does this mean? He is also coming to the national capital. So is it safe to say that the central Congress leadership will be overseeing the new cabinet formation as well?
5: Well, in fact, you know, this is nothing but a message that both Siddaramaiah and DK Sivakumar want to say, which is that they are going by the books of the High Command. And that's why, you know, just minutes after Siddaramaiah will depart to Delhi, wherein he will go ahead and meet with Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, wherein he will tell them personally, thank them for the kind of options that they have provided him and the kind of support that they had given. We're also now hearing from sources that likely DK Sivakumar is also expected to go to Delhi this evening. Around 7:30 is the time scheduled. So it looks like both these leaders will go about and, you know, give their thanks to the High Command for the kind of amicable transmission of power that is being shifted from one hugely tall leader to another here in Karnataka. Remember, these two are, if there isn't any synergy between them, it is complete chaos in Karnataka. Thankfully enough, both of them have maintained decorum. Both of them have ensured that even though their MLAs are voicing out, even though there is some kind of, off-site protests that are going on, demanding for Siddaramaiah to not resign, whereas demanding for DK to finally be named as the chief minister. We are seeing that these two leaders are maintaining their crew at an arm's length. They are telling them, listen, hold your peace and we will wait. And that's what you can also see here. In just a short while from now, you can also see DK Sivakumar, who will be leaving to Delhi, and Siddaramaiah, who is also leaving to Delhi this evening. Both of them likely to go ahead and meet with the High Command there. Remember, DK Sivakumar has been waiting because it was the High Command's decision there which had made him wait all this long, even though there were some kind of a tussle, some kind of a struggle that had been there between Siddaramaiah and DK Sivakumar just a couple of months back. There was yet another breakfast meet that we had seen, wherein both of them had come out very smiling, very happily saying all is well. But we did know and we did hear of the strains that had took place before the High Command had intervened. And now after this short meeting in Delhi just a couple of days back, wherein Siddaramaiah had said what he had to say, and DK Sivakumar waiting patiently on the promise that was made to him. DK Sivakumar has been one of the close people who has been in the likes of Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, and Rahul Gandhi as well. The only
1: right, Apoorva, we leave it there for the moment. At the moment, the news for our viewers is this. Siddaramaiah has resigned. DK Sivakumar is likely to take oath on Sunday. At the moment, both leaders expected to come to the national capital, meet with the leadership, and perhaps a cabinet formation will happen under their guidance as well, or perhaps truce making as well. At the end of the day, it is a new chief minister of the same government. Think of it like a new boss in the same organization that you work for. But until leaderships change, matter, it matters to the people. But what will it really bring about for the people of Karnataka? They have a host of issues. Their capital, Bengaluru, also has a host of issues. So let's see if under this new leadership, things change for the people of Karnataka. That should be our focus for the moment. We're leaving it at that. Thanks so much for watching. News continues right here on India Today.

0: Sorry.
1: Darling, darling, दिल क्यों तोड़ा? कीजिए मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा. आओ भैया, आओ भैया. बाबा चश्मा लगाए, हर जगह भगवान नजर आए. जब भी बिजली जाए, मिनी बुलडोजर पंखा चलाए. आए आए आए, गर्मी का इलाज पाए पाए पाए.
2: दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस. मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस. आयो भाई साहब, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
3: हम्बा हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा रम्बा, भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा.
4: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल. गमछा घुमाओ,

0: sorry.
1: Darling, darling, दिल क्यों तोड़ा? कीजिए मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा. आओ भैया, आओ भैया. बाबा चश्मा लगाएं, हर जगह भगवान नजर आए. जब भी बिजली जाए, मिनी बुलडोजर पंखा चलाए. आए आए आए, गर्मी का इलाज पाए पाए पाए.
2: ₹10 निकालो, ₹10 पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस. आयो भाई साहब, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
3: हम्बा हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा रम्बा, भवानीपुर के कुल्फी सबसे ठंडा.
4: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमा.

0: sorry.
1: Darling, darling, दिल क्यों तोड़ा? कीजिए मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा. आओ भैया, आओ भैया. बाबा चश्मा लगाएं, हर जगह भगवान नजर आए. जब भी बिजली जाए, मिनी बुलडोजर पंखा चलाए. आए आए आए, गर्मी का इलाज पाए पाए पाए.
2: ₹10 निकालो, ₹10, ₹10, ₹10. पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस. आयो भाई साहब, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
3: भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा.
4: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल. गमछा घुमाओ, गर्मी भगाओ.
5: को प्रेजेंटेड बाय हिंद थर्मल्स फॉर ऑल, बड़े आराम से. पावर्ड बाय जनरल एयर कंडीशनर द एक्सट्रीम मशीन. को पावर्ड बाय एनईसीसी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे.

0: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं, निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग अभी, इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है ना बढ़े, हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में ये हम सबको अपील करते हैं। आज हमने जो CBSE की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, OSM उसको कहा, पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं, इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: So sorry.
3: मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा, आओ भैया, आओ भैया, बाबा चश्मा लगाएं, हर जगह भगवान नजर आएं, जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाएं, आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए।
4: ₹10 निकालो, ₹10 पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस। आयो भाई साहब, आइसक्रीम ठंडी ठंडी आइसक्रीम, लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है।
5: हम्बा हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा रम्बा, भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा।
6: वोकल बनिया वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमाओ गर्मी।

0: Sorry.
1: Darling, darling, दिल क्यों तोड़ा? कीजिए मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा. आओ भैया, आओ भैया. बाबा चश्मा लगाए, हर जगह भगवान नजर आए. जब भी बिजली जाए, मिनी बुलडोजर पंखा चलाए. आए आए आए, गर्मी का इलाज पाए पाए पाए.
2: दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस. मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस. आयो भाई साहब, आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
3: हम्बा हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा रम्बा, भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा.
4: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल. गमछा घुमाओ गर्मी भगाए.

राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं, निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग अभी। इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी की शब्दों में ये हम सबको अपील करते हैं। आज हमने जो CBSE की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, OSM उसको कहा, पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं।

0: मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा। आओ भैया आओ भैया, बाबा चश्मा लगाएं, हर जगह भगवान नजर आए, जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाएं, आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए।
1: दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस। आयो भाई साहब, आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम, लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है।
2: भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा।
3: वोकल बनिया वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमाओ गर्मी भगाओ।

0: sorry.
1: Darling, darling, दिल क्यों तोड़ा? कीजिए मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा. आओ भैया, आओ आओ भैया. बाबा चश्मा लगाएं, हर जगह भगवान नजर आए. जब भी बिजली जाए, मिनी बुलडोजर पंखा चलाए. आए आए आए, गर्मी का इलाज पाए पाए पाए. दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस. आयो भाई साहब, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
2: भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा.
3: वोकल बनिया वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमा.

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं. निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं. उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया. भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है. मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूँ और उनको अनुरोध करता हूँ, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है. राजनीति कर सकते हम लोग. अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है ना बढ़े. हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं. आज हमने जो CBSE की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा. लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, OSM उसको कहा, पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया. उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं. इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है. उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
5: Sorry. Darling, darling, dil kyun toda? Kijiye mohabbat ka sharbat thoda thoda. Aao bhaiya, aao bhaiya. Baba chashma lagaye, har jagah bhagwan nazar aaye. Jab bhi bijli jaye, mini bulldozer pankha chalaye. Aaye, aaye, aaye. Garmi ka ilaaj paaye, paaye, paaye. 10 rupaye, 10 rupaye, 10 rupaye nikalo, 10 rupaye, 10 rupaye, 10 rupaye. Pee lo ganne ka jas. Milegi thandak, nahi rahoge bebas. Aayo bhai sahab. Ice cream, thandi thandi ice cream. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
6: हम्बा हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा रम्बा, भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा. ठंडा कुल्फी खाइए और गम पूछेंगे.
7: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमाओ